अमेरिकी ऐं इसराइली ॾांहुं ख़िलाफ़ मज़ाहमत खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो बाक़ी न बचियो आहे। हिज़बुल्लाह जी जिदोजहद दुनिया जे आज़ाद क़ौमनि लाइ हिकु मुतासिर कंदड़ पैगाम बणिजी वई। लबनान ख़िलाफ़ इसराइल इसराइली हुकूमत जे जाहिरियत जो ग़ैर मशरूत ख़ात्मो अमेरिका सां थियल मुआहिदे जी हिकु बुनियादी शर्त आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामना हिज़बुल्लाह पारां वफ़ादारी जे अज़म लाइ लिखियल ख़त जो जवाब में चयो आहे त ईरान मज़लूम पर ताक़तवर हिज़बुल्लाह मुजाहिदीन जे दिफ़ा खे पंहिंजो फ़र्ज़ समझे थो ऐं ईरान हिज़बुल्लाह सां पंहिंजो स्ट्रेटजिक सहारो जारी रखंदो। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जे डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां टेलीफोनिक राब्तो खिते जी ताज़ी सूरतहाल इलाकाई ऐं आलमी अमुन तोड़े इस्तेहकाम खे हथी वठण लाइ सिफारतकारी ऐं तामीरी राब्ता जारी रखण ते डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त बाद उमीद आहे त धुरियूं ॻाल्हियूं ऐं राब्ते जो अमल जारी रखंदियूं छाकाणि त पुरअमन ऐं पाएदार हल ताईं पहुचण लाइ ॻाल्हियूं इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। डायरेक्टर जनरल गोर्सी डिप्टी वज़ीर आज़म खे गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जे उहिदे लाइ पंहिंजे उमेदवार बाबति आगाह कयो। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार गॾियल क़ौमनि हिकु मुयसर घण तरफ़े निज़ाम लाइ पाकिस्तान जे मज़बूत हिमायत जो वर्जाउ पिणु कयो। ईरान ते हमलनि में शिदत वारे मामले ते अमेरिकी क़यादत इख़्तिलाफ़नि जो शिकार। नायब सदर जे डी वेनस ऐं फ़ौजी सरबराह डीन केन ईरान ख़िलाफ़ जंग में शिदत ते ख़दशनि खां सदर ट्रंप खे आगाह करे छॾियो। CNN मौजूब जनरल डीन केन आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे ईरान ख़िलाफ़ इम्कानी फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति नतीजनि ऐं ख़तरनि खां आगाह कयो। हथियारनि जे ज़खीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि चैलेंजिस बाबति बि ख़दशा रखिया। नायब सदर जे डी वेनस बि ख़िते में एहतियातनि जे ख़दशनि बाबति सदर खे आगाही ॾिनी।

0: अमेरिकी फौज सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मन बाद ईरान से हमला रोके छड़ा। अमेरिकी मीडिया मौजूद सदर ट्रंप पेरियाट दिफाई मिसाइल के जखीरन में घटाई अरबे तादन खर्चन कार्रवाई न करण जो फैसलो कयो आहे। व्हाइट हाउस मूजिब सदर ट्रंप सदाई तकरार जे सफारती हलन के तरजीह डिनी आहे। जेकॾहिं ईरान अबन हर्मुज ऐं इतिहादिन खिलाफ़ शिदत ते बदल कार्रवाइयूं जारी रहियूं त सदर ट्रंप वटि सब ऑप्शन मौजूद आहिनि। ईरान लाइ बहितर आहे त ॻाल्हियुनि वारो रस्तो इख़्तियार करे। अमेरिका पारां हमला बंद करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातनि खां हमला नाहिल कया, जंहिं बाद ईरान बेजवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकिजी पियो आहे। अमेरिका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सान थियो आहे। 200 खां वधीक अमेरिकी फ़ौजी मारिया विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखेड़िजी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसियुनि खां मुतासिर थी फ़ैसिला न करण घुर्जनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज,
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's time to commercial break.
1: अकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचते हैं।
2: अकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुंघरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरत

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू भी. कॉल करने के लिए 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर. लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि पोस्ट आपको मिलेगी GFM88 के पेज के ऊपर. जिंदगी गुलजार है की पोस्ट. एंड वहां पे आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज्वाइन कर सकते हैं. तो हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें आप कॉल करके एक अदद गाना सुनाएंगे और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. Bye.

0: जी कॉल्स आप लोगों की लेना हम स्टार्ट कर रहे हैं 03001314488 के ऊपर. फर्स्ट कॉलर ऑन द ऑफ द शो. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. कॉल ड्रॉप. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? स्मार्ट किशोर
1: जी.
0: इतने दिनों बाद वाकई स्मार्ट किशोर है.
1: लिख कर दूं?
0: सॉरी आपकी आवाज थोड़ी कटकट के आ रही है.
1: असल में क्या आवाज आपकी वापस आती है.
0: अच्छा आवाज
1: इस हिसाब से मुझे इतना समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल आपको क्लियर आ रही है.
0: हाँ ये है कि आपकी आवाज अब मुझे क्लियर आ रही है. स्मार्ट किशोर कैसे ठीक ठाक? इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं. इतने दिन तक कहाँ थे आप? मसरूफ थे
1: जबरदस्त
0: जबरदस्त. कोई गाना शाना लेकर आए? प्रोग्राम सुन रहे हैं आज?
1: अरे आप बताओ मिस किया आपने.
0: एग्जैक्टली मैं अपने सब लिसनर्स को बहुत मिस करती हूँ जो नहीं आते, और आपने आए. डेफिनेटली हमने हम सब ने आपको बहुत मिस किया. लिसनर्स ने आपको बहुत मिस किया. मैंने आपको बहुत मिस किया. आपके गानों को मिस किया. और अब हम यही सोच रहे हैं कि इस माँ किशोर अब क्या गाएंगे.
1: अच्छा ये मुहाफिज का ओएसटी
0: है. अच्छा और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, मुहाफिज का ओएसटी ना मैंने क्यों करके रखा हुआ है. अभी मैं चलाने ही वाली थी. सीरियसली अगर कोई कॉलर ना आता तब मैं ये गाना चला देती.
1: चलें ठीक है, फिर टाइम ज़ाया नहीं करते.
0: ओके ओके.
2: जाने जब तक फिदा नहीं होती, जाने जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती.

0: किया बेवफा से वफा नहीं होती, बेवफा से वफा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती।
1: ओके वेरी नाइस, और कुछ कहना है, किसी को डेडिकेट करना है?
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक यू।

0: इट्स चाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम पिघली हीट सॉप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम पिघली हीट सॉप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम पिघली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम
3: सचल की सर मस्त धरती
4: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी।
1: या, नमी जाट

0: रुक सा, मैं आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक सुर लगाओ, गाना सुनाओ। नेक्स्ट कॉल है, हेलो।
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
1: मैडम रुखसार ठीक हो, खैरियत से?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से?
1: मैं सक्कर से बात कर रहा हूँ, दानिश।
0: सक्कर से दानिश बात कर रहे हैं, कैसे? ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बारे ठीक हो?
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी जी।
0: ओके, मुझे बताएं प्रोग्राम सुनते हैं?
1: बिल्कुल सुनते जी।
0: गाना सुनाएंगे?
1: गाना अपना फरमाइश का बने सुना दे।
0: अपनी फरमाइश का मतलब अपनी पसंद का? चले ओके, मैं सुनाती हूँ जी। और कुछ कहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज। और मेरी फरमाइश का गाना, मैं किसे फरमाइश करूं? चले मैं अपनी फरमाइश का गाना आपको सुना देती हूँ। और वैसे मेरी फरमाइश का गाना अभी तक मैंने कोई लाइनअप नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि अच्छा सा सॉन्ग जो कि मुझे आ रहा है नज़र, तो उसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम चलेंगे आगे। और आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। सो हियर कम्स द सॉन्ग, ओएसटी सॉन्ग फ्रॉम तपेश।

ओके, आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने कहना है कि टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका, ठीक है, ये कहना है. टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका. इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. और अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा बोलो तो माने, और आप कहेंगे कि टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका. ठीक है, सही है. इसी के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल प्लस न्यूज ब्रेक की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम रेडियो नेटवर्क सिंध की.

हिते में दहशतगर्दी जो सब का वो सरपरस्त है अदम इस्तेकाम जो जिम्मेवार है दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ भारती वजीर राजनाथ सिंह के बयान के रद्द कंदे है तो भारत के जारहान कदम सबब खितो यर्गमाल है भारतीय वजीर के बयान बाजी बिगड़ती जोगी है जेका खतरन के वधिक वधाए रही है। अमेरिका से गाली लाए तैयार आयो ईरान पाकिस्तान समेत सार्स मुल्क के आगाह कर छो अरब मीडिया के रिपोर्ट मूजिब ईरान पाकिस्तान के आगाह किया है तेहरान वाशिंगटन से इस्लामाबाद दोहा या जेनवा में गालू कर तैयार है। ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल वकाई है तो पाकिस्तान कतर समेत सार्स मुल्क तेहरान वाशिंगटन विच में राबतन लाए फाल किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका गालिन दौरान टों भेरों हमलो किया ईरान दिफा लाए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियार के जखीरे में कोर्ट वार खबर के रद्द कर छो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से ाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वट दुनिया के कें भी मुल्क हथियार जखीरो मौजूद है अमेरिकी दिफाई सलाहित बाबत गर्दिश कड़ खबर में हकीकत न है। पेंटागॉन ईरान खिलाफ जंग में अरड़ा फौजन के मारजन की तस्दीक कर छी 200 का जख्मी ईरान खिलाफ जंग में मारजी वेल चार फौजन जा नाला लिस्ट में गायब अमेरिकी खबरू इदारे मूजिब गुजरियल हफ्ते पेंटागॉन जंग दौरान मारजी वेल चार फौजन के लिस्ट में हटाया है नाला हटाने जो को भी कारण ना बुधाया वो। अमेरिका ईरान पारा एक बे हमला रोकने बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण लगो।

कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जी शहादत के 78 साल मुकम्मल थी विया। शहीद के सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल अहमदकार भेट आपेश। सदर आसिफ जरदारी है कैप्टन सरवर शहीद कश्मीर की आजादी ला जिंदगी कुर्बान कई। वजीर आजम शहबाज शरीफ समूरे कौम शहीद के भेट आपेश करे थी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: GFM 88 मीरपुर खास की आवाज।
2: साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण भी ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
4: यार कुझु ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण भी ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपका मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और इसके अलावा ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी. एंड हमारा सेगमेंट बोलो तो माने, और बोलो तो माने में आप लोग एक अदर टंग ट्विस्टर के दिखाएंगे. आज का टंग ट्विस्टर है कि टप टप टपके टपक टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका. ठीक है, ये कहना है आप लोगों ने. और जब आप ये कहेंगे ना तो देखते हैं कौन अच्छा अच्छा और सही सही कह पाता है. और जो अच्छा अच्छा सही सही बोलेगा वो

कॉल्स आप लोगों के लेंगे हम 03000113488 के ऊपर और देखेंगे कि आज का तंग टोस्टर कौन सही सही और अच्छा अच्छा कह पाता है. सो हियर कम्स द फर्स्ट कॉलर. अगर तुम्हें रिसीव कर

0: 1-800-011-34-88 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जा रहा है, साथ साथ आप लोगों की कमेंट्स और मैसेजेस को तरफ भी हम मूव करेंगे. एंड हमें चुन किया है जी मंजर महमूद मंजर ने, और कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा जी कहते हैं कि जी नज़ीर खोजो हमारे से मौजूद हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, थैंक यू सो मच. और इस वक्त हमें और भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं आप लोगों के. उस्ताद अहमद बख्श वसीर हम सुन रहे हैं विलेज डिंगल खान वसीर सेठारजा से, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आप मेहनत कर रही हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा जी आप ट्यूनिंग किए हुए हैं. अच्छा कॉलर्स आना शुरू हो चुके हैं, कॉल्स लेते हैं. हेलो हेलो वालेकुम असलम, कौन कहाँ से? हाफिज लखमीर फ्रॉम मोरो. भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंगटस शो बोलेंगे, अच्छा मैं बताऊं तो बोलेंगे. आपने कहना है टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: क्या टप टप टप?
0: आपने कहना है टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: टप टप टपके टपकता टपका, टपके टपके से
0: टपकते टपके से टपका टपका. कहीं ना नहीं आएगा, चलें कुछ और कहेंगे. ओके जी, डर के मारे कॉल काट दी, वेरी बैड. डरने की क्या जरूरत थी, जबरदस्ती थोड़ी कहलवाती आपसे. अच्छा नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: जी मैं वकार लाड़काना.
0: वकार लाड़काना से, कैसे भाई ठीक ठाक हैं?
2: तो रुखसार भाई आप सुनाए आपके.
0: रुखसार भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएंगे टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे.
2: जी जी सुना रहे हैं, लेकिन दुखिया है ना,
0: दुखिया है, थोड़ा सा कोशिश तो करें.
2: बरसा पानी.
0: नहीं नहीं बरसात तो है ही नहीं इसमें, किधर से ला रहे हैं बरसात?
2: टिप
0: भी नहीं है, टप टप है, टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
2: टपके नहीं भाई निराश न चीज.
0: चलें कुछ और कहेंगे.
2: हेलो
0: जी जी कुछ और कहेंगे.
2: जी मोसा गड मुझे नंदीडियो प्रोग्राम दे बुदन नाला खड़ा होने का.
0: हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, ले लें
2: जी. आसिया डॉक्टर आसिया फातिमा जोया अफसार अमीर ता के तानी पूरी टीम के सलाम. गाना तो बुद रहे हैं.
0: गाना कौन सा सुनेंगे?
2: गाना काला न्यावी का सुनाओ, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल.
0: ओए होए होए होए ओए होए होए. चले ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और इसके अलावा जी हम प्ले कर रहे हैं एक अदद गाना, गाने के साथ कंटिन्यू करेंगे सेगमेंट को, स्टे ट्यून्ड.

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: रखी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपका मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बोलो तो मानी सेगमेंट में. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट कॉलर जो कि हम लेने जा रहे हैं. हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं?
1: सफदर बलोच मोरू से.
0: सफदर बलोच मोरू से
1: जी.
0: टंग ट्विस्टर सुना है? बोलेंगे सुना है,
1: अलग मुश्किल है, नहीं आए.
0: अच्छा तो बोलेंगे टंग ट्विस्टर?
1: नहीं बोल पाऊंगा.
0: नहीं बोल पाएंगे? अरे ये तो आप सही नहीं कर रहे.
1: मुश्किल है ना.
0: चले और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कहेंगे? कहें
1: मुझे गाना सुना दो.
0: चले मैं हम आपको जरूर सुनवाते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. 03000113488. एक और कॉलर ट्राई करेंगे. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम. या अली मदद.
0: सलाम. कौन कहाँ से?
2: जब तक बिका न था कोई पूछता न था. तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया. आपने जागदानी का सलाम है मोहब्बत.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल?
2: अल्हम्दुलिल्लाह. ये सूरत इलाही किस लेस बस्तियाँ हैं. अब दिन के देखने को अरे आखिर तरस्तियाँ हैं. ये कैसे अब्बा पर इनके और में आज चलाना है मेरी कॉल के बाद. अब मुझे कहते हैं पहरा जमाने वाले, जब तक खुद गूंगे थे आवाज लगाने वाले. मेरी कीमत न लगा पाया खरीदार कोई, बिक गए खुद मुझे बाजार में लाने वाले. ये जमाना भी जमाना तो वही है लेकिन बस यहाँ लोग नहीं है वो पुराने वाले.
0: अरे वाह क्या बात है.
2: बस यहाँ लोग नहीं है वो पुराने वाले. जो प्यार करते थे अब रे पीछे वाली बेटा आगे लग गई है. रुपया फर्क ही आ गया है. ये जमाना भी जमाना तो वही है लेकिन बस यहाँ लोग नहीं है पुराने वाले. इस भरोसे पे अदालत में भला जाए कोई, खुद ही मुजरिम हूँ जब इंसाफ दिलाने वाले.
0: अरे
2: शायद इस रास्ते में, शायद इस रास्ते में तुमको नहीं भूल सका. शायद इस रास्ते में तुमको नहीं भूल सका. याद रहते हैं बुलाने वाले. दोस्ती उनसे रही मेरी समंदर की तरह. उससे करते रहे आग लगाने वाले. आज वो लोग मेरे रक्त का मरहम है नकी. कल तलक मुझे थे तलवार चलाने वाले. ये आपने अल्ताफ बलो जागजानी का सलाम है मोहब्बत कबूल और पंतन पाक के साय में रहो बेटी. अल्लाह तुझे अपने अमान में रखे.
0: थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. और ये थे स्वीट कॉलर जाग जानी अंकल. और इसी के साथ हम चलते हैं जी आगे. और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स भी आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो हम गाने की तरफ चलेंगे. एक गाना प्ले करेंगे एंड देन हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे अपने सेगमेंट्स को. सो हियर कम्स द सॉन्ग, द ब्यूटीफुल सॉन्ग. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: यार कुछ नहीं
2: आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल सूर लाए
2: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है
1: इस्तेमाल किए कजे
2: मुतासिर थे हंध ते डीह में ब का टे भेरा नरमी सा लगायो।

आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स पॉइंटमेंट सूरखा आराम हर रोज हर कदम अडी स्टोर था नालो वठी खरीद करो। फकीरी डेक्स पॉइंटमेंट

0: मोरो नौशेरो लाड़काना
1: सखर
0: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध किया
0: मोरो नौशेरो
1: मीरपुर खास
0: लाड़काना
1: सखर
0: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की आवाज
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क

0: Keys, you welcome back once again. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. अभी जो लास्ट में वापस आ चुके हैं एंड हमें बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं. आप कॉल्स हम आप लोगों की लेते हैं और लास्ट लकी कॉलर्स भी लेने हैं. और आज का टंग ट्विस्टर जो कि अभी तक कोई नहीं कह पाया, इतना टफ टंग ट्विस्टर. चेक करते हैं जी एक और कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आपसे पहले लार्सना से आपका शो प्यारा सुन रहा हूँ.
0: ओके, टंग ट्विस्टर बोलेंगे.
1: आपका टंग दुखिया है?
0: इतना दुखिया नहीं है, बोल के तो देखे.
1: इंशाल्लाह कल वाला बोलेंगे, आसान नहीं है.
0: कल वाला बोलेंगे. ओके, अभी कुछ और कहना है, कुछ बोलना है?
1: मेरे दोस्त सुन रहे हैं. आपका शो जबरदस्त चल रहा है. जी ऐसे बैठी है नेटवर्क पक्का, मेरी नेटवर्क का सभी ने शो कनेक्ट कर लिया, शिकायत नहीं दिया.
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और टाइम बहुत लिमिटेड है, जल्दी जल्दी चलेंगे आगे. एंड हमें कमेंट रिसीव हुए हैं जी. आदिल हुसैन का कमेंट आया है, हाय हाउ आर यू रुखसार, ठीक हूँ. अच्छा, नौरंग अली हमें सुन रहे हैं, हालानी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. क्यों सुन रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, आई एम लिस्निंग टू योर शो एट होम, योर शो इज ग्रेट. और मीरपुर खास से ही हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू. और रियाज मेहर हमें सुन रहे हैं, रियाज मेहर सीए, सलाम जी. वालेकुम अस्सलाम रियाज मेहर. और जाग जानी अंकल कहते हैं कि प्लीज प्ले सूरतें. ये किसका गाना है? चले हम इसको सर्च करते हैं, और मेरे पास 5 मिनट हैं, और अगर तो ये मुझे मिल गया तो मैं प्ले करूंगी. और डेडिकेशन से जी बिस्मिल अजरा खोसो और मुझे. ओके जी, अगर मुझे ना भी मिला तब भी हम लास्ट वाला सॉन्ग जो है ना, बिस्मिल अजरा खोसो और मुझे डेडिकेट कर देंगे हम. ठीक है, मैं खुद डेडिकेट करूंगी. क्या ख्याल है, लास्ट लकी कॉलर ले, 03000113488. आज पता नहीं क्यों मुझे टाइम शो का बहुत ऐसा लगा है कि पता नहीं शो मैंने किया है या नहीं किया, मजाक को पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम था मेरे पास, जबकि टाइम उतना ही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कम था. अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? सॉरी, नाम बताएं.
2: कशिश.
0: कशिश बात कर रही है, कहाँ से?
2: मोरो से.
0: कशिश, कशिश पहली दफा कॉल कर रही है?
2: जी
0: हाँ. ओके कशिश, प्रोग्राम सुनती है?
2: यस.
0: कैसा लगता है?
2: बहुत अच्छा है.
0: बहुत अच्छा है. ओके, मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है?
2: आज की अच्छी बात तो है किसी को दुख ना देना और दिया है तो फिर माफी मांगे.
0: ओके, दिया है तो फिर माफी मांगे. वेरी वेल सेड. और कुछ कहना है कशिश?
2: जी हाँ.
0: बोले
2: आप से पूछना चाहते
0: टंग ट्विस्टर बोलना है?
2: यस.
0: बोले जल्दी जल्दी से बोले.
2: एक मरतबा
0: मैं बताऊं? ओके, मैं बताती हूँ आपको. आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह से था.

0: टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका, टपके टपकते टपका, टपकते टपके से टपका टपका, टप टपके टपकते टपकते टपके से टपका टपका.
0: वेरी नाइस.
1: पता ना
0: नहीं काफी है इतना, और मुझे लगता है कि मैं जितना बोलूंगी आप उतना कह भी देंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास. सो थैंक यू सो मच कशिश, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ओके अल्लाह हाफिज जी. और हम क्या करेंगे, हम लास्ट में प्ले करेंगे लास्ट सॉन्ग. अच्छा मेरे पास लास्ट में ना दो सॉन्ग्स, और मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में ये दोनों ही प्ले करूंगी, लेकिन अब इसमें से चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कौन सा प्ले किया जाए. क्यों क्योंकि मैं जा रही हूं, तो मुझे लगता है कि एक तो गाना ये है, सफर भाई बयान, इसी को चला देते हैं जी, और लास्ट में इसी के साथ हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह. मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी, सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर. गुड बाय, अमाने खुदा, अल्लाह हाफिज.
2: रातें हैं कहते हैं सब मगर

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अरे जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं White Ash and Skin Beauty Show, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Ash Beauty Products and Skin Beauty Products के तावन से। ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएंगे कौन कौन है और बताएंगे तरीकेकार क्या होंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। लेकिन उससे पहले जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक पूछा जाएगा तो वो बता देते हैं सबसे पहले। तो बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा अतरंगी होने वाला है। अतरंगी ऐसे कि थोड़े नॉर्मल से सवाल पूछ पूछ कर मैं जरा उकता से चुकी हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों से आज जो सवाल पूछूं वो थोड़ा सा अतरंगी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आज का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे कि भाई इंसानों के पास तो आजकल मोबाइल फोन का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। यानी कि एक टाइम पर हमारी सोच हुआ करती थी कि फोन जो है वो एक घर में इतने फोन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो वो हमारी सोच से बात तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है, आप मुझे बताएंगे अगर ये रुझान जो है जानवरों के पास भी होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आगे जाकर जानवरों के पास भी मोबाइल फोन आना स्टार्ट हो जाए, तो मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा रील जो है वो कौन सा जानवर बनाएगा। हाँ जी, अगर जानवरों के पास भी मोबाइल फोन आता होता तो सबसे ज्यादा रील्स कौन सा जानवर बनाता, आपको क्या लगता है बताएं मुझे जल्दी से। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। पेज को आपने फॉलो कर लेना है, उसके बाद पेज को आप जैसे ही खोलेंगे आपको हमारे प्रोग्राम White Ash and Skin Beauty Show की लाइव पोस्ट मिल जाएगी। जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे, तो पोस्ट को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये तीनों काम है जो कि आप लोगों ने करने हैं, सिर्फ कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। ओके जी, तो ये तीनों काम कीजिए, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि अगर जानवरों के पास मोबाइल फोन होता तो सबसे ज्यादा रील्स किस जानवर ने बनानी थी। हाँ जी बताइए जरा। और साथ साथ अगर आप White Ash Beauty Products का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो White Ash Beauty Products आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये चीज जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसका हाल भी बताएंगे कि कैसे अवेलेबल कराएंगे। और अगर White Ash Beauty Products में आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा तगड़े किस्म के प्रोडक्ट्स ये हैं जो कि White Ash वालों ने तैयार कर लिए हैं आप लोगों के हुस्न के मुताबिक, आप लोगों की स्किन के मुताबिक। अगर आप भी खूबसूरती में जरा सीरियस हो चुके हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं, तो White Ash Beauty Products का इस्तेमाल मस्ती जनाब लाजमी करके देखें, आपको मजे आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि भाई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें तो खूबसूरती मिलेगी, छोड़ दें तो फिर खूबसूरती भी चली जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं बनेगा। इस्तेमाल कीजिए और अपनी खूबसूरती को लॉक कीजिए, क्योंकि आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो चुके होंगे। इस्तेमाल कीजिएगा White Ash Beauty Products हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर आदिल हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसियां मैं ठीक, आप बताएं। देखते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ओके, और गाना ओके में कोशिश करूंगी, लगाएंगे आपका गाना। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, लिखते हैं कि अल्फाज इंसान की असल पहचान में, अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि इंसान की शख्सियत, सोच और तरबियत का आईना होते हैं। नरम लहजा और अच्छे अल्फाज दिल जीत लेते हैं, जबकि सख्त अल्फाज बरसों के रिश्ते तोड़ सकते हैं। हम आम फहम सही मगर सादा लोग हरगिज नहीं। ओके जी, बहुत बेहतरीन। और हैप्पी गर्ल कहती है हेलो अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आरजे केसियां, शो तो मेरी नाइस है और शो के साथ साथ हैं आप भी। अच्छा, शो के साथ साथ मतलब मैं भी नाइस हूँ। थैंक यू। अखलाक भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अखलाक भाई। चाला अमान मियू हमारी साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अमान भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक है। हजार खन जदो ये मैं सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। अदीस इद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं, शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच प्यारे भाई, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। कहते कि हम भी आपके साथ साथ हैं, गुड शो, थैंक यू जी। मुश्ताक अहमद कुंभर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा बाजी आप कैसी हैं, सिद्रा बाजी बहुत अच्छी, आप बताएं आप कैसी हैं। आमिर अली कहते हैं मैडम आदिल, ओके जी। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे साथ मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहती हैं आपके शो की क्या बात करें जी, शो ब्यूटीफुल है।
1: इट्स time to commercial break.
2: को कहें अलविदा.
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश.
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है.
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद.
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार.
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: अब आपकी खूबसूरत

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुग्यो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर ए तजुर्बेकार डॉक्टरन जी निगरानी में मुनासिब फीस ते मरीजन जो इलाज, डॉक्टर्स सर्जिकल ए मेडिकल सहूलतों, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत जी खिदमत असा जो मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुग्यो ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड वेझो, डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। वधिक मालूमात लाए 03413429824।
3: आंखों के सबसे बड़े इदारे के खान सफेद मोती का ऑपरेशन, बजरिया लेजर फेको, काले पानी का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर आँखों का अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। फोन नंबर 03032617077।
4: सिंधड़ी आमों की सरजमीन,
5: सिंध का शहर खास,
4: मीरपुर खास।
6: जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज, जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद। जीए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे, पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो। जीए मीरपुर खास FM 88, वधिक राब्ते लाए मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर्स 03227243013 0333-3722-071।
4: मीरपुर खास की आवाज।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी आवाज।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: यार कुछ नहीं। खां चेल जो सूर जोड़न जी तक
2: करी
1: ये वाकई फायदे वाली है छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासर थे हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ है सट धक लगन पुराना जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए बे फायदेमंद है
1: इस्तेमाल किए कजे
2: मुतासर थे हंद ते डी में बखा ट्रे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुध रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान
4: जी वो सजी
5: सजी
4: सिंध की मेहमान नवाज
6: खूबसूरतियाँ हासिल करनी है तो जरूर से आप खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बताते चलूं तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना वाइट एश वाले ये आजमाए हुए प्रोडक्ट्स है मैंने जितने भी लोगों को सजेस्ट किया था जितने लोगों ने भी मेरे आस पास जितने भी लोग उन्होंने इस्तेमाल किया तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है ना कि सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जी भाई जान ये प्रोडक्ट्स तो बहुत ही कमाल के और सबसे बड़ी बात सबसे बेहतरीन बात कि हर एक हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया गया है हर किसी का ख्याल रखते हुए यानी कि कोई नाइट क्रीम लगाता है कोई नाइट क्रीम नहीं लगाता है कोई फेयरनेस क्रीम लगाता है किसी को एक नी प्रॉब्लम है कोई सोप लगाता है कोई फेस वॉश लगाता है तो हर किसी को देखते साथ ही हर किसी की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया गया है और तैयार किया गया है अगर आप भी अपनी खूबसूरती को जरा तलाश कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है तो आप वाइट एश का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो आपको बताने लगी हूँ अगर आप फेयरनेस क्रीम कोई भी इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि बहुत जबरदस्त किस्म की ये वाइट एश वालों की फेयरनेस क्रीम है ओके जी वाइट एश की जो फेयरनेस क्रीम है ना वाइट एश लवली करके इसका नाम है वाइट एश लवली क्रीम और वाइट एश लवली क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फेयरनेस क्रीम है ना ये सब फेयरनेस क्रीमों से थोड़ी मुख्तलिफ है मुख्तलिफ इसलिए इसको तैयार किया गया है क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ जो है ना इसको डिजाइन किया गया था जिसके अंदर आप लोगों को विटामिन का फार्मूला तो मिल रहा है लेकिन साथ साथ आपको सनस्क्रीन भी ऐड की गई है इसके अंदर ताकि आप लोगों को ये जो सूरज के असरात जो होते हैं ना खतरनाक असरात उनसे भी बचाया जाए आपकी स्किन की हिफाजत की जाए तो आपको खूबसूरती मिलेगी साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी अगर आप कोई भी काम काज करते हैं कामों काजों वाले इंसान हैं तो आप वाइट एश लवली क्रीम का यूज तो लाजमी कीजिएगा कोई भी जॉब करते हैं किसी भी काम से जाते हैं कोई भी सुबह उठकर आपको बस रेडी होना होता है स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कोई भी सीन चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर तो वाइट एश लवली क्रीम जो है ना ये बहुत एक अच्छा काम करेगी आपकी जिंदगी के अंदर तो वाइट एश लवली क्रीम का यूज आप लाजमी करके देखिएगा इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई लगा सकता है कोई भी एज लिमिट नहीं है और इसके साथ साथ आप लगाइए जी मजे कीजिए और उसके अलावा खूबसूरतियों को लूटते रहिए और यहाँ पर वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मजीद प्रोडक्ट जो हैं जैसे कि वाइट एश ब्यूटी क्रीम आती है तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है जिसे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो कि नाइट क्रीमें लगाना पसंद करते हैं जैसे बहुत से लोगों की स्किन को नाइट क्रीमों की जरूरत भी होती है अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह की नाइट क्रीमें आना स्टार्ट हो चुकी हैं जैसी आपने पहले लगाकर देखी हुई जो कि आप लोगों की खूबसूरती का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर चुकी हैं तो आप वाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि भाई नेचुरल अज़ा से तैयार की गई है इसके अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है मिल्क मिल रहा है और एलोवेरा मिल रहा है ये सब चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है इसे आप रात के टाइम अप्लाई कर सकते हैं और वाइट एश ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को जो है ना वो सॉफ्टली बना देती है नर्म मुलायम बना देती है आपके चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे की खूबसूरती को उजागर करती है और आपको मिलता है परफेक्ट वाला हुसन लेकिन बात यह है कि सैया जरा आपने वाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ वाइट एश ब्यूटी सोप या फिर फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर कुछ लोगों की आदत होती ना कि वो सोप लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं तो आप लोगों को वाइट एश वालों ने दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं यानी कि यहाँ पर आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है एंड व्हाइट एज फेस वॉश भी मिल रहा है। तो व्हाइट एज का जो सोप है ना वो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का डिटो कॉपी है, सेम टू सेम दोनों देखते हैं भाव भी लगना है। पर जैसे तुम व्हाइट एज जो फेस वॉश वठण वेंदा आई तुम यो सोचिंदा तो बाबा हाँ व्हाइट एज जो साबुन सफा व्हाइट एज जो फेस वॉश व्हाइट एज जो छो ना तो फेस वॉश जो ना थोड़ो अलग उनके तैयार कर अंदर वाइटमिन सी है जो कलर आवे ऑरेंज मिल समझो था व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम थोड़ो ग्रीन पैकिंग में है व्हाइट एज जो फेस वॉश हों वो ऑरेंज कलर में है तो इन अंदर वाइटमिन सी है वाइटमिन सी जो कलर ऑरेंज हों एतरी तो खबर होंगी सही आ। तो व्हाइट एज जो फेस वॉश तुम लगे सो क्रीमी फेस वॉश है ढो जबरदस्त फेस वॉश है तुम स्किन में जी वाइटमिन सी की कमी आ पूरी थी वी तुम्हारी स्किन सफा ग्लोइंग थी वी आई तुम लगाइंदा कि बाबा फेस वॉश तो डी में बटे दफा तुम लगे सो था साबुन भी तुम डी में बटे दफा लगे सो था व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तुम रात जो लगाओ बस रात जो लगाए सुम्ही पो व्हाइट एज लवली क्रीम अगर तुम लगाना चाहो था तो व्हाइट एज लवली क्रीम के तुम ब दफा या जैमल भी जड़ी मल भी तुम्हारी दिल चवे तुम लगाओ छो तो अक्सर ये थोड़ा ना अस रेडी आयो काडे वन के लिए तो तुम डी में बटे भी फंक्शन अची वा या तुम सुबह जो स्कूल वनो था जॉब से वनो था वरी तुम शाम जो कोई फंक्शन है तुम चो बबा अस सुबह लगाई से हाँ लगे सूँ था बिल्कुल लगाए सको था ये फेयरनेस क्रीम है तो तुम मेकअप के तौर जी लगाए सको था जी कुछ मानू चंदा तो बाबा मेकअप का बचने के लिए असो सुठो प्रोडक्ट लगाए तो फेयरनेस क्रीम हुए जो लाइट भी हुए स्किन के खूबसूरत भी बनाए तो तुम्हारे लिए व्हाइट एज लवली क्रीम है। बाकी अगर तुम एक्नी का परेशान आयो दाणा तुम्हारे पीछे ना छो तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल कर सको था डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की सब का बेहतरीन गाल है तो ये मेडिकेटेड ट्यूब है ये जड़ी बूटन से तैयार थियल है उनका अलावा आयुर्वेदिक फार्मूलो है ये सिर्फ दाणन जो खात्मो न बल्कि चेहरे से जो दाणन जो निशान हूँ या फिर रिंकल्स या फिर कोई चोट जो निशान आ कोई सड़न जो निशान है अड़ी तरह जी प्रॉब्लम्स आज फेस से चाहो तो बाबा ये खत्म थे घुर्जन तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल कर सो था ढो परफेक्ट ट्यूब अव पा पर्सनली यूज कर दिठो है कोई भी एक्नी निकरी ना बस तुम झट से डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगे छो एडो थदो थदो वीआईपी वीआईपी तांके एहसास दींदो पर लगाने का पहले एक गाल तांके पांजो फेस वॉश करना है पांजे हथ चंगे तरीके से क्लीन करो हथन की क्लीन करे पो तवां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब पांजे फेस से अप्लाई करो सजे चेहरे ते ना ही लगाणो जिते जिते एक्नी आ निशान आ कोई भी कट जो निशान आ को सड़न जो निशान आ उन एरिया ते लगायो पो तवां छडे जो तां डी में ब टे दफा लगाए सको था यानी कि तवां के घणा सफा घणा एक्नी आन तो पो तां सुबह मंझंद ऐ शाम जो लगायो न त तवां सुबह जो ऐ रात जो लगायो सही आ कि डाडो वीआईपी ट्यूब थव तवां इन के ट्राई करे दिसजो तो मतलब तुम लगाइंदा तो स्किन के अंदर मतलब जो जज्ब थी वेंदो अड़े तरीके से लगाए तो एक्नी के मथा नजर अच्छे डॉट डॉट कर लगाओ तो स्किन से सफा वीआईपी तक रिजल्ट दी तवजा सब प्रॉब्लम्स दूर थी वन था जैसे तुम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर था सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल लाजमी कर जी तुम्हारी खूबसूरती तक मिली वे तुम करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था तो नंबर आए जनाब साई मुझा नंबर लाजमी डायल कर नंबर डायल कर तो करीबी जनरल स्टोर से ही तुम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा सो नंबर आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 03-27-38-4309 नंबर तुम डायल कर करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करा तुम कॉल या मैसेज छड़ो तो तुम एरिया में अवेलेबल करा छा उन्हें तंग न किन्दा कर बाबा मिस कॉल एडी डे भजी ना कंजूसी न करी उनके मैसेज छड़ो पा समझी वा तो किथे किथे जो ना व्हाइट एज का प्रोडक्ट अवेलेबल ना असें अवेलेबल कराने घुर्जन ठीक है तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर जी उन्होंने वेचार भी आसानी थी वे उनके खबर पे तो किथे किथे अना तीन असा प्रोडक्ट अवेलेबल को सो बिल्कुल तुम प्रोग्राम बुध पाया व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाया था कौन बुधायो तो सही खबर तो पवे

ॾाढी मुर्द सां गई अथई, मां बि सोचां पियो पंहिंजो रेडियो स्टेशन खोलाए, ॾाढो नचो अथव अला, ॾाढो ख़र्चो अथव. तव्हां बसि ॿुधो असां आहियूं न रेडियो हलाइण जे लाइ.

जी बहुत प्यारा गाना एंजॉय करिए और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। मैं जरा खो चुकी थी आप लोगों के फीडबैक्स की जाने। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान जी आपके

प्लीज इधर सॉन्ग लगाइएगा रंग तेरा ऐसा। चले मैं देखती हूँ ये गाना मिला तो लगा लेते हैं। बख्त अली सियाल भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? ओके जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि मुझे पता चलेगा कितने सारे लोग हैं जो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। एसन आरबाणी में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मौलवी इस्लाम मदद कहते हैं, माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान लाड़काना की पहचान, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। बहुत शुक्रिया एसन, आप हमारे साथ साथ हैं। और बताएं वाइटेश का कौन सा प्रोडक्ट लगाने का इरादा है या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही? रिहाना खाना में सुन रही है, बखर से हेलो। ओके जी, ये हमारे साथ हैं गुलाम फरीद बलोच। सलाम आजय सदरा जी, आप कैसी हैं और बाकी सब ठीक ठाक हैं? आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, सॉन्ग लगाएगा फायजा अली का। बिल्कुल जी, आपको फायजा अली सुनाते हैं। किशोर भाई कहते हैं, अगर खुदा मुझे कहे आप जिंदगी भर के लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जिसके फेस पर मुस्कुराहट जचती हो तो मैं आपका नाम लूंगा। ब्लशिंग। देखो मैं कितनी मासूम हूँ, मैं तो इतने में ही पिघल जाती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलें दूसरा गाना भी सुन लेते हैं और इसके साथ से जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए। और जो नंबर आपको बता रही हूँ ना, वो नंबर आप डायल किया करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके। और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे तो आपके लिए ये चीज होगी कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे। हैप्पी गर्ल कहती है, स्वीटी आपके सवाल का जवाब है कैटी कैटू। चाचा खालिद कहती है, अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, आप कैसी हैं फीलिंग टुडे? मेरी फीलिंग बहुत अच्छी है, आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी फीलिंग कैसी है? वासु भाई हेलो कैसे हैं? अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंट से, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। अनवर भाई कहते टॉपिक खट्यो खाए फकीर लठ्यू झले, न न लठ्यू बेचारो भोलड़ो झलींदो आए। जी वासु भाई के दादी गोठ नितल जलपाणी खां शहजादो जलपाणी तव्हां जो प्रोग्राम बुधी पयो भाजू मोहब्बतूं आहिनि बाबा वाइटेश ब्यूटी क्रीम जो डस्ट डेस। अखलाक भाई कहते हैं नाइस वाइटेश ब्यूटी क्रीम, आप कब लगा रहे हैं बताएं तो। हजार खान कहते हैं कि यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना, बंद आंखों से भी नजर आती हैं कुछ लोग, वाह वाह वाह वा। दर्दे दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं स्वीटी। और ये हमारे साथ हजार भाई कहते हैं समझी वयासी वाइट एश जी लवली क्रीम सबक हाँ बेहतरीन आए। बिल्कुल वाइट एश जी लवली क्रीम था मतलब मां चवंदी आहियां त दुनिया जो जेको हिकु हिकु माण्हू आहे न हिकु हिकु माण्हू यानी कि जेकी दुनिया में सॼा माण्हू आहिनि उहो हिकु हिकु माण्हू वाइट एश जी लवली क्रीम लॻाए सभिनी जे मतिलब हिसाब वारी क्रीम आहे सभिनी खे फ़ाइदो पहुचाईंदी ऐं जेका चीज़ तव्हांखे फ़ाइदो पहुचाए तव्हां लाज़मी वठंदा कयो।

रमजान अली भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं बहना, आपका शो आपके शो में आ गया, वेरी नाइस शो, थैंक यू भैयू जी। दर्द दिल कहती है माय फेवरेट आज चंदा जानी, खिलना गुलाब का नहीं हरगिज कोई दलील, तुम मुस्कुरा रही हो तो समझो बहार है, कसम तो सच्ची बताया जा। अच्छा किशोर भाई कहते अदा अगर अवहां जो गानो हलायण फर्ज आए तो लिसनर जो भी फर्ज आए तो हफ्ते में एक या बद दफा रिक्वेस्ट करे, बाकी रोज रोज फरमाइश करें न कपे, अगर करन था तो इंतजार भी करना जे मौको मिले उन्हें हलाईंदे एतरी जो न थोड़ो ख्याल हर कोई न रखंदो आए वीचारी आरजे जो सो बस मिड़े चवंदा असां भी हलंदी के हलाए ये हुए तो बाकी भी छा खे चलें जी गानों एकड़ो बियो लिस्ट में मौजूद है तसा ही वारो गानो बुधी वठू था काफी टाइम का सोचा पे सही गानो छो न बुधो है सो वो काफी टाइम खेर सा अजी वयो है सो बिल्कुल ता बुधो पया प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश।

ट्रेंडिंग में चला था, चाचे बुआ है शायद, यू चे बुआ जड़ी बूटी याला के चाचे बुआ, इतनी सीधी तनिया तई वो कौन से किया है। और कहते हैं अच्छा डॉट डॉट करे तवा के व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ना, तवा के व्हाइट एज जी जे का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ना ओहा लगाणी है, छो त जिते जिते तवा के एक्ने हुंदा उते उते लगायो, त डॉट डॉट थी वियो ना कदी कदी मुखे एक्सप्लेन करण भी ना आई।

0: माई जो आवाज़ ॾाढो भलो आहे.
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, vir.
0: गाने जा करें, गाने के बाद हम जाएंगे जनाब न्यूज ब्रेक की जानिब. उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले ही वापसी जल्दी आप लोगों के पास. सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए. और आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं बताएं ना, इतना देर छुता गयो भला.

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: थियल पोइ शाम 5 वॻे ताईं।

1439 वोटर वोट जो है भारत खिते में दहशतगर्दी जो सब का वो सरपरस्त है अदम इस्तकाम जो जिम्मेवार है दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ भारत वजीर राजनाथ सिंह के बयान के रद्द कंदे है तो भारत के जारण कदम सबब खितो जर्गमाल है भारत वजीर के बयान बाजी भी गणती जोगी है जेका खतरन के वधिक वधाए रही है।

अमेरिका के ॻाल्हियूं बहाल करण जी दरख़्वास्त नाहे, ईअं करणु असांजी फितरत में नाहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त साल असां ताईं अमेरिका जा पैगाम पहुचाईंदा आहिनि, फ़िलहाल वॉशिंगटन सां असांजी का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। आबन हरमुज़ बाबति ओमान सां मुस्बत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, आबन हरमुज़ जी सूरत हाल तब्दील नाहे थी। खे जंग ऐं अमुन जो वक़्तु तय करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। यूक्रेन खे ईरानी जहाज़ ते हमले जो जवाब ज़रूर ॾिनो वेंदो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका वटि दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूदु आहे। अमेरिकी दिफ़ाई सलाहतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरुनि में हक़ीक़त नाहे।

ईरान अपना मुज़मा गुजरण की कोशिश कदड़ छह बैरी बेड़न के रोके छो। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिब अपना के गैर महफूज रस्ते तां सफर की कोशिश कदड़ छह बैरी बेड़न में एक हादसे जो शिकार थो है। बहरी बेड़ा अमेरिकी फौज के हिदायतन से अपना हरमुज़ में सफर कर रहा हुआ त खेन

0: वतन की मोहब्बत से सरशार गूंज रही है मुतासिर हंदा ते जल्दी जज़ब थी सूर सोडियम जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी तेल जो सूर हुजे गोड़न जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल किए कजे रुगो मुतासिर हंद ते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हज ते वणन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
1: वाह पोए अजी वठींदस
0: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
2: मोहम्मद उमर बुगियो
3: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

फायज अली के गाने की फरमाइश करती थी, तो ये फायज अली का गाना आप एंजॉय कीजिए, और साथ साथ जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया आपको वेलकम कहा जाता है, साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि अगर जानवरों के पास मोबाइल होता तो सबसे ज्यादा रील्स किस जानवर ने बनानी थी, बताएं जल्दी से। वैसे तो हमने बहुत कुछ देख लिया है, अब यही चीज रहती है कि भाई जानवरों के पास भी फोन हो। वैसे एआई वाले तो हमने बहुत सारे देख लिए, लेकिन क्या पता आगे जाकर कुछ हमें रियल को भी देखना मिले, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो बताइए जल्दी से आपको क्या लगता है।

जी यहाँ पर हमारे साथ कश्मोर से खलाक बलोच कहते हाय सदरा प्ले सॉन्ग लगायो तब बतान जो गानों भी तावेरो पानी सीट थे। इरम कहती ओ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त जाने सिदरा प्लीज आज मुझे मुमताज मुलाई का सेहरा लगाइएगा सुनाइएगा। बिल्कुल सुनाते हैं आपको सेहरा। रियाज महर है जी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। अच्छा बशीर लिगारी हमारे साथ है, गोठ मीर खान लिगारी। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर की आयो अवां जो प्रोग्राम लाजवाब आए रोज बुधन आयो सो मोहब्बतों प्यारे भांजो। थैंक यू सो मच चाचा खाले तवां गाने जी फरमाइश कया हलायन जी फुल कोशिश कयो था। यासीन गुडाड़ो हमारे साथ अल्लाह जो शुक्र है अवां बुधायो की आयो। शाहिद बबर जो कलाम बुधरायो डेडिकेट बशीर लिगारी जी नाले।

हां जी ही गानो काफी टाइम का बुधू भया पर सोचा पई त कदी हलाईंदासी फायसा जे गाने जी फरमाइश अची वे तो मु सोचो त ही गानो बुधी वेठो था सो यासीन भा ताजो मोहब्बत आइन ता बिनिन भा उनके वेलकम चो था मायरा सने प्रोग्राम उदे पई मायरा छाला खुश आयो सोनी के दी आपी जान में भी आपकी अच्छा आप हमारे साथ है यदि आप ही एक बात पूछो कुछ लोग ब्लैक कलर की ड्रेस में इतने प्यारे क्यों लगते हैं क्योंकि वो डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं और जो लोग डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर तो ब्लैक कलर जचेगा ना तो ये असल रीजन ये है कि उनके ऊपर ब्लैक कलर क्यों जचता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हो चुके हैं तो डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके ऊपर भी ब्लैक कलर अच्छा लगे अच्छा फजीला सिंधी हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आज सिस्टर सिंद्रा मुस्कान कैसी हो डियर जी और कहती हैं सलाम माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम टॉपिक के ऊपर कहती हैं केट ओके

जी डेस्कन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सोना सोना थी वणो बाबा खूबसूरती हासिल करण सबनी जो हक है रमजान भाई छा चो अच्छा गानो बिल्कुल तांचो गानो हलाण जी कोशिश कयो था प्यारा भा और उदास लड़की हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम उदास लकड़ी चाहिए थी वेलकम टू शो और टॉपिक देती है केट ओके जी उनका अलावा

हैप्पी गर्ल, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा खुश रहें. वैसे तो आपका नाम ही हैप्पी गर्ल, वैसे भी खुश रहें, मुस्कुराती रहें. अब्दुल वफा अब्दुल वही जतोई हमारे साथ हैं, भाई को वेलकम कहा जाता है. और हमारे साथ हैं जी यहाँ पर दर्दे दिल दर्दे

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा एसन बिल्कुल आपकी पसंद का गाना भी लगाते हैं। अच्छा हजार भाई कहते हैं कि महबूब पोस्ट तक नहीं आता और बाबा जी ने कदमों तक का लारा लगाया हुआ है, यही तो रोला है जी, बात को समझा करें, चक्रों में नहीं पड़ा करें।

भाई हमें सुन रहे बलूचिस्तान से नवीद भाई आपको वेलकम कहा जाता है। वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे लाड़काना से भाईजान को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। वासव भाई ने तो जवाब वखरा ही दे दिया। हैप्पी कहती है कि आरजी डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ली है तभी वो इतनी खूबसूरत हो चुकी है। आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के देखिएगा। अनवर भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो जवान ना बल्कि नौजवान थी वनो। जवान ही नौजवान में केड़ो फर्क आ है। एक्सप्लेन अस प्लीज।

0: अच्छा अकलाक भात आंखी गोलणो न पंदो बस तां पांजे करीबी जने स्टोर ते वणो उता मालूमात वठो दी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करयो छो एंड तवा पो इस्तेमाल कयो तां पाणी सोणा थी वेंदा अच्छा निधड़ी कहती है टॉपिक मेरे कजिन्स क्योंकि वो सब जानवरों से कम नहीं ये तो अस मोमेंट हो गया दर्दे दिल कहती है टॉपिक कैट और मेल में गदा ओके जी ओके अनवर भाई कहते हैं ऐसा सिर्फ बिन रातन में अमीर थियण चाहूं था भली पेश के शाये फायदो वठो किस्मत वरी वरी साथ न डींदी आए बिल्कुल बिल्कुल अनवर भाई ॾिसो केॾो सियाणो आहे बिन रातन में बिल्कुल तां अमीर थी वेंदा अमीर न बल्कि अमीरनि वारी तव्हांखे फीलिंग अची वई त बसि माना ॻाल्हि ख़तम थी वई नी सो बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिले थो इनखे नवे सारियो बाबा नवे सारियो भला थियो गानो ॿुधो गाने सां गॾु असां वञूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटी ना थी तव्हां वेठा हुजो मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई टेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से लेकर तलब कीजिए
3: खूबसूरती जो अतीत मारो बीट्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: मोहम्मद उमर

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: गजब थी। सूर्य आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल सूर लाए
0: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ है सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
1: इस्तेमाल किए कजे
0: मुतासिर थे हंध ते डी में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी जे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रो

गाना खोड़ सारा लिस्ट में मौजूद आहिनि, सो धीरे धीरे सभु असां गाना ॿुधंदा वेंदासीं। हिकिड़ो गानो हलायो आहे जेको मंज़ूर सिकरानी जी आवाज़ में हूंदो शायदि, आई थिंक सो, सो बिल्कुलु ॿुधंदासीं। हुन खां अलावा पैनल ते कुझु तव्हांजा मैसेजिस आहिनि, इहे मौजूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी मिठड़ी, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? फुल जी स्टेशन खां फोर जी अच्छा, फौजी भाई कहते हैं थोड़ो तांजो नालो मुके समझ में नथु अचे, थोड़ो हेडा उरा थिया त पंजो मैसेज चेक करे वठ जो लाइ छा लिखियो तव अदि असां के फौजिया सुमरो जो गानो बुधायो। बिल्कुल भामा कोशिश कयां थी तांजी पसंद जो गानो हलाए वठूं था। और शोनी की थी आपी नहीं नहीं चुप कर। और ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मौला अलैहिस्सलाम मदर बेरिया रोड खान डॉक्टर हसीना सुमरो अदि भेण असांखे गानो ॿुधायो फ़ाइज़ा अली जो, बोल आहिनि तावीज़ कराए तोखे मूंखां जुदा कयो अथनि। फ़ाइज़ा अली जो गानो हाणे असां ॿुधी वेठासीं, इहो गानो तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदासीं, ठीकु आहे? और हाफिज़ नईम उल्ला भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाजी, आप कैसी हैं? आप अल्लाह करे हमेशा मुस्कुराती रहें, आमीन, थैंक यू सो मच। कहते आपने पूछा था कि क्रीम मिल रही है नहीं, तो मुझे पता नहीं है। चले फिर आप ऐसा कीजिएगा, आप अगर जाएं मार्केट तो आप मालूम लीजिएगा, ठीक है? अवेलेबल है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर जो नंबर आपको बताए जा रहे ना उनके ऊपर रब्ता करके उन्हें बताइए कि फलां जगह पर आपके प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके जी, हाफिज नईमुल्ला भाई आपको वेलकम कहा जाता है। और इरम कहती है थैंक यू। शोनी कहती है आपी वाह वाह क्या बात है जी, ले है आपकी तो

ओके जी, बहुत प्यारा गाना सुन रहे हो, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया. और साथ ही साथ हैं जी हमारे साथ जवान मोहम्मद बच्चन शंबानी भाई. वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच. साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं. मिठू देरों से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम कहा जाए.

0: किशोर भाई कहते हैं कि जिसने ब्लैक कलर का पूछा उसको आपसे उम्मीद थी कुछ अलग कहेंगी, लेकिन आपने वही कहा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है बाबा। हमसे भाई कुछ अलग की उम्मीद मत रखें, हम आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ही बताएंगे। क्योंकि जो हकीकत है वो कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाई तो जल्दी लगाइए, ठीक है, वरना देर हो जाएगी। आप खूबसूरत नहीं होंगे, सारे लोग खूबसूरत हो जाएंगे। ओके, निदड़ी छाती चली
1: जान तो
0: क्या बोला मैंने अच्छा अनवर भाई कहते हैं प्रोग्राम बुधण वक्त मीह भी वसे, गड चाय भी हुजे, समोसा भी हुजन, पकोड़ा भी हुजन, आए हाय छा तो फीलिंग हुंदी। यो सब थी सके तो, पर सिर्फ हिकड़ी बारिश जी कमी आए। सो बारिश अगर थी वने थी त पो सब कुछ आसान आहे। सो अलाह कंदो मी वसंदो बाबा, तां रे टेंशन न कयो, दिल नंडी न कयो। ऐं ही आहे गानो जेको असांखे एसन शायद फरमाइश कयो हुयो।

अच्छा था हिते छा था चो त नौजवान जो मतलब नौजवान मूंखे हाणे ॻाल्हि समझ में आई अच्छा रमज़ान भाई तव्हांजो गानो हलाइण जी कोशिश कयूं था बाबा न हलियो त 5 बजे वारी प्रोग्राम में हलाए वठूं था ठीकु आहे टेंशन न वठो

अच्छा हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये हमारे साथ मीर तारिक बलोच, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को, लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं, पूरी संगत प्रोग्राम बुधे पई सुतवान जी सबनी जो मोहब्बत हुआ सबनी खींचा था वेलकम।

लग भाई कहते माँ समझो लाइट हली वही मुखे लगो माँ का हरकत है कई शायद पर न बाबा गाने जो हो फॉल्ट एकदम सत्ते में आ गई ओके और ऐसे कहते हैं के चाय पीनी या जेके पीनी या वो पांजी वेठी पिए हाओ बाबा हाओ समझी वासे आई पांजी पांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी वेठी चाहिए भी तो चौनी खबर पवे मानन के आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिली तो बाबा जी के नंबर बुधानन के रातो जरूर करे वेजो समझो था चाचा इन की छोस पर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सको था हाँ तो लगाओ डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल ही दर्द दिल अभी हमारे साथ मौजूद है बाबा बारिश में तो पकोड़ा ही सुछा लगना है मकोड़ा ने तो पकोड़न के लोग कहोस

छो भला गाने के तकड़ हुई अचण जी वीचारे के गायन तले सा अच्छा ही सॉन्ग है जो असान जी प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक थियण वारो है हां जी बाकी जगह गाना जिन मानो जा बच्चन था ना पंची बची वाली प्रोग्राम में अच्छी हलाई नाम ठीक है सो मुंह ने सुझाए जो अज थोड़ो अधा थोड़ी सेटिंग कया सो मैं पान कंफ्यूज हो

0: हां जी गानो तो डाटू भलो तमा बुधो पया पर तमा असस गड मौजूद आयो तमा जो मोहब्बत हुआ इन बाबा ये कुर्बा है अल्लाह करी कुर्बा हमेशा कायम है दायम रहे आई तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणदा रहो ई डी स्किन जो फेस वॉश भी हणदा रहो उन के अलावा वाइटी जो प्रोडक्ट भी हणदा रहो तमा से एरिया में नाहिन अवेलेबल तो तमा अवेलेबल कराए वठो बाबा अवेलेबल कराए वठो अच्छा कराची में वाकई थोड़ी भी बारिश थी वेंदी आ तो सरो सिस्टम नहस नहस थी वेंदो है वैसे वहां का थोड़ा सिस्टम अजीब है मैं तो कहती हूँ भाई शाबाश उन मानन खा जके उते रहन था मतलब घूमने के हिसाब से सही आवन घूमे फिरी मोटी जो बस पाने पाने गोट रहन वारो कमजोर है उतना ही ट्रैफिक तो मुख्य लगे तो कराची जी मानो जी अध उम्र तो ट्रैफिक में गुजरी वही है बेचारा अरे छा तो अदा तुझी जबान में अजकल यो थोड़ो कमेंट समझ में ना आयो थोड़ो समझाए जो इन के अलावा टाइम भी सफा खत्म थी है प्रोग्राम जो भाई तवा से मुलाकात वरी थे पई मुंजी 5 बजे वाले प्रोग्राम में तो बिल्कुल जी 5 बजे वाली प्रोग्राम में मिलूं था ई तवा जॉइन कता 5 बजे वाली प्रोग्राम में अगेते का गलती थी हो जाए तो माजरत कयूं पया पांचले सरो
1: इट्स 3 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: फकीरी नी वीकली हिट्स ऑफ

शुरू थियल पोलिंग शाम 5 वगे ताईं जारी रहंदी। पोलिंग स्टेशन ॿाहिरां वोटर जूं कतारूं लॻल। मीरपुर डिवीजन जे 3 ज़िलनि मीरपुर, कोठी ऐं बंबर जे 13 तकनि ते 14,01,439 वोटर वोट जो हक़ इस्तेमाल कंदा। सिक्योरिटी इंतिज़ामनि ताईं सख़्त कया विया आहिनि। 4 सूबनि खां 17,000 खां वधीक पुलिस अहलकार मुक़रर थियल आहिनि।

0: भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ भारतीय वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहणनि क़दमनि सबबि खितो यर्गमाल आहे। भारतीय वज़ीर जे बयान बाज़ी बिगड़ती जो बि आहे जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे। अमेरिका खे ॻाल्हियूं बहाल करण जी दरख़्वास्त नाहे कई, ईअं करण असांजी फितरत में नाहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त साल्स असां ताईं अमेरिका जा पैगाम पहुचाईंदा आहिनि, फ़िलहाल वॉशिंगटन सां असांजी का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। आबना हरमुज़ बाबति ओमान सां मुस्बत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। आबना हरमुज़ जी सूरतहाल तब्दील नाहे थी। अमेरिका खे जंग ऐं अमुन जो वक़्तु तय करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। यूक्रेन खे ईरानी जहाज़ ते हमले जो जवाब ज़रूर ॾिनो वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वटि दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खां ज़खीरो मौजूदु आहे। अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरनि में हक़ीक़त नाहे। पेंटागोन ईरान खिलाफ़ जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी। 200 खां वधीक ज़ख़्मी, ईरान खिलाफ़ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फ़ौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब। अमेरिकी ख़बरू इदारे मूजिबि गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागोन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फ़ौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे। नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो। ईरान आबना हरमुज़ मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ 6 बैरी ॿेड़नि खे रोके छॾियो। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि आबना हरमुज़ जे गैर महफ़ूज़ रस्ते तां सफ़र जी कोशिश कंदड़ 6 बहरी ॿेड़नि मां हिकु हादसे जो शिकार थियो आहे। बहरी ॿेड़ा अमेरिकी फ़ौज जे हिदायतनि ते आबना हरमुज़ मां सफ़र करे रहिया हुआ त खेनि रोकियो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आ है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आ है छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम मा आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
3: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थे हंद ते डीह में 2-3 भेरा नरमी सा लगायो, आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर का आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो। फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आज़ाद कश्मीर के आम चूंडन के पेरे मरले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जो अमल जारी। पोलिंग जो अमल मुकम्मल थियण में बाकी एक कलाक बचो। सुबह 8 वगे शुरू थे पोलिंग, 5 वगे तई खत्म थी। पोलिंग स्टेशन्स बारह वोटर्स जो कतारू लगल। मीरपुर डिवीजन के टिन जिले मीरपुर कोटली मुंबर के 13 तकन से 14,1,439 वोटर रजिस्टर्ड थे। सिक्योरिटी इंतजाम ताई सख्त क्या वह नून लीग ए पीपुल्स पार्टी जहा एक बे धांधलिन जहा इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का जांच जो मुतालबो। भारत खिते में दहशतगर्दी जो सब का वो सरपरस्त है, अदम इस्तेकाम जो जिम्मेवार है। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ भारतीय वजीर राजनाथ सिंह के बयान के रद्द कंदे है तो भारत के जारान कदम सबब खितो यर्गमाल है। भारतीय वजीर के बयानबाजी भी गणती जोगी है जेका खतरन के वधिक वधाए रही है। अमेरिका के गालियों बहाल करण की दरख्वास्त ना है कई ये करण असांजी फितरत में ना है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई चवाए तो साल से असा ताई अमेरिका जा पैगाम पहुंचाईंदा है। फिलहाल वाशिंगटन से असांजी का भी गाल बोल न थी रही है। आबना हरमुज बाबत ओमान से मुस्बत गालियों थियूं आहिन। आबना हरमुज की सूरत हाल तब्दील ना थी। अमेरिका के जंग ए अमुन जो वक्त तय करण की इजाजत न डी वेंदी। यूक्रेन के ईरानी जहाज से हमले जो जवाब जरूर दिनो वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियार के जखीरे में खोट वाल खबर के रद्द कंदे है तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वट दुनिया के कें भी मुल्क हथियार जखीरो मौजूद है। अमेरिकी दिफाई सलाहतन बाबत गर्दिश कदड़ खबरों में हकीकत ना है। पेंटागोन ईरान खिलाफ जंग में अरिड़ा फौजन के मारजन की तस्दीक कर छी। 200 का वधिक जख्मी। ईरान खिलाफ जंग में मारजी वेल वधिक 4 फौजन जा नाला लिस्ट में गायब। अमेरिकी खबरू इदारे मूजिब गुजरियल हफ्ते पेंटागोन जंग दौरान मारजी वेल 4 फौजन के लिस्ट में हटाया हुआ है। नाला हटाने जो को भी कारण ना बुधाया वो। ईरान आबना हरमुज में गुजरण की कोशिश कदड़ 6 बेरी बेड़न के रोके छो। ईरानी सरकार मीडिया मूजिब आबना हरमुज के गैर महफूज रस्त सफर की कोशिश कदड़ 6 बेरी बेड़न में एक हादसे जो शिकार थो है। बेरी बेड़ा अमेरिकी फौज के हिदायतन से आबना हरमुज में सफर कर रहा हुआ तो खेन रोको वो। ईरान यूक्रेन खिलाफ रूस के हथियार फराम करे जंग में शामिल थी चुको है। असांखे मोहतात रहनो पवंदो, कोशिश करनी पवंदी तो नव मुहाज न खुले। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है तो ईरान ए शुमाली कोरिया पेरे ही असां ते हमला कर चुका है। उम्मीद है तो हमला न वधंदा। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी है तो ईरान पैंजे खिलाफ कार्रवाई से जवाब जरूर दीन्द है। यूक्रेन के भी जल्द खबर पेजी दींदी। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितने बाबत छिड़काईद इंकशाफ। रुगो 25,000 से बलोच नौजवान के कतल करण जो एतराफ़। दहशतगर्द हबीबुल्ला है तो दहशतगर्द तंजीम पैसों की लालच दई भर्ती कर दहशतगर्दी की तरबियत भी डिनी वही। हमलन बाद सुणप लिकायण ए फरार थे गुर भी सेखारिया वह। रुगो 25,000 एवज पैंजन बलोच भार रत से हथ रंगिया। दहशतगर्द तंजीम छदींद मारो वो है। सिंध जो सरकारी अस्पतालों एचआईवी पखेड़ जो सबब बणजण लग्यूं। गिम्स वलीका ए लांडी जे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची जी सब का वे बार अस्पताल एनआईसी एच इलाज ला आयल बार एचआईवी में मुबतला होने की तस्दीक। जरियन मूजिब सिंध के मुख्तलिफ इलाक में इलाज ला एनआईसी एच आंदल बार टेस्ट कराने दौरान केतन ही बार में एचआईवी की तस्दीक थी है। कराची के मुख्तलिफ इलाक में इलाज ला एनआईसी एच आयल बार में एचआईवी की तस्दीक थी है। बार अंग 50 है। वजीर सैद मुराद अली शाह से रोटरी इंटरनेशनल की वफद की मुलाकात। पोलियो के खात्मे बारे क्वेश्चन में रोटरी इंटरनेशनल के किरदार की वाखाण। मुराद अली शाह पारा पोलियो के खात्मे लाए खुसूसी मुहिम शुरू करण की हिदायत। वरे वजीर चयो तो पोलियो जो खात्मो हुकूमत की पहली तरजीह है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जी शहादत के 78 साल मुकम्मिल, शहीद के सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल एम बेन पारां भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी है तो कैप्टन सरवर शहीद कश्मीर की आज़ादी लाइ जिंदगी कुर्बान कई। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो समूरी कौम शहीद के भेटा पेश करे थी। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिस आडो मेरिट की लताड़ खिलाफ एहतजाज जारी। चटाभेटी इम्तिहान पास कंदड़ उम्मीदवार ए शागिर्द कमीशन की ऑफिस आडो कायम कल कैंप ते वेठल। कराची बार जो सेक्रेटरी अरशद शरवे शागिर्द के एहतजाजी कैंप ते पहुंतो, शागिर्दन के सहकार की खातरी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पानी के खोट खिलाफ सियासी समाजी धुरन जहा मुजाहरा ए धरणा। खैरपुर नाथन शाह में जरे पानी खोट खिलाफ यूथ पार्लियामेंट आबादगार एताज के सड से एहतजाज किया वो। नारा डिस्ट्रिक्ट कालरा शाह खुदावा बेन वाहन में पानी के खोट खत्म करने मुतालबो। भान सईदाबाद में बंभा ए सुल्तानपुर शाख में पानी के खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों किया वो। मेहर ए भरपासे की शाखन में पानी खोट खिलाफ आबादगार मार्च ए धरणो। शाखन के पोछड़ ती पानी पहुंचाने जो मुतालबो। चवण भरसा छांगारा में पीण के पानी के बोहरान ए मच्छर डंड की बहाली लाए एसयूपी की रैली। मुजाहरीन मूजिब मच्छर डंड के कुदे ते आबाद यूनियन काउंसिल झंगारा में पानी खोट अफसोसनाक है। रहवासिन पानी पीण के लिए परेशान आन। मच्छर के बहाल कर झांगारा शहर के पानी फराम किया वे। शादात कोर्ट में वधंदड़ बदमनी खिलाफ शहरी एताज के सड से सियासी समाजी तंजीमन जो एहतजाज मुजाहरो करे कोटो मोटो चौक से धरणो हयो वयो। अगवाणन चयो तो शादात कोर्ट शहर में बदमनी वधी वई है। फुर ए चोरियों आम थी वयू आन। पुलिस शहरन के तहफुज देण में नाकाम थी वई है। शहर में अमुन बहाल करायो वे। टंडो आदम भरसा मुबैना तौर अगवा थियल वापारी शकील बलोच पंज डी गुजरण बावजूद वाजियाब न थो। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स ए अवामी एक्शन कमेटी ए वारसन जो धरणो। मुगवी वापारी शकील बलोच के बाजियाब कराण जो मुतालबो। मुजाहरीन मूजिब पुलिस मुगवी वापारी की बाजियाबी लाइ कुछ भी न करे रही है। नोटिस वरतो वे। मदे की भरसा वीगो के टक्कर में अठ में हूं मरी वयू। सखर लाड़काणो रोड से हादसों पेश आयो है। भागिन मूजिब मरी वेल मेहन की कीमत लखे रुपया हुई। एक वण सिंध अमर के नाव केटीएन न्यूज ए कावश के सड के भरपूर मोट। सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असरन का बचाने लाए सिंध वासिन पारा वण लगाने जो सिलसिलो जारी। केटीएन न्यूज ए कावश पारा 31 जुलाई 2026 ताई वण पोखण जो सड डिनल है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GAFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की आवाज।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

जी अब्दुल सत्तार भयो चवे। शामराद मिदरी खास फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खास फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: नजर नहीं हो रहा। इंसान को दुनिया कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्बार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींच और उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना फिर रूह के सामने तमाशा बन गई। मामा
4: अच्छा।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

आसान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्ड वोटर्स कायम थे 2454 पोलिंग स्टेशन में पंज वोट जो हक इस्तेमाल कयो। औरतुन जो वडो अंग भी वोट कास्ट करण लाए पोलिंग स्टेशन से पहुंचे हुए। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आजाद उम्मीदवार समेत 296 उम्मीदवार मैदान से लथल। वोटर के गैर मामूली टर्नआउट सबब पोलिंग जो वक्त 1 कलाक बढ़ाया वो हो।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: It's 7:15 PM.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है। कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकदाई, कैसे किस्मत खुलाई। आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad of the marshal, mad at mirror, instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician. I never take such a position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, billabulously, click home meticulously. Loves me medicinal, say, love kia mene kalam se. Such bola mene kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sab ke. Karte kab se, baate pakki, baate kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing. Keep the toxic out of my zone. Tell you the sharif up knee off of my throne. But before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone, 'cause you are

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुंघरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलणु फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Varam, Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफद की मुलाकात, खिते की मौजूदा सूरत हाल और दिफाई सहकार वधाने ते गाल बोल, बेतरफन व्यापारी ए इक्तसादी राबतन ते भी ख्याल जी दे वठ। ISPR मूजिब रियान केथ जनकी ए माइकल जेम्स GHQ जो दौरों कयो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के वसी इक्तसादी सलाहियतों ते रोशनी विधी। पाकिस्तान ए अमरीका जा लागापा वधिक मजबूत बनाने ए मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधाने जो भी अजम वरचायो वयो। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के चूंडन के पहरें मरहले लाए मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग जो वक्त खत्म थियण का पोए वोटन की गणप जारी। मीरपुर कोटली ए बम्फद के 13 तकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्स वोटर्स कायम थियल। 2454 पोल

स्टेशन में पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमालु कयो। औरतुनि जो वॾो अंग बि वोट कास्ट करण लाइ पोलिंग स्टेशन ते पहुतो। पीपुल्स पार्टी, नवाज़ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐं आज़ाद उमेदवारनि समेत 296 उमेदवार मैदान ते लथल। वोटर्स जे गैर मामूली टर्न आउट सबबि पोलिंग जो वक़्तु 1 कलाकु वधायो वियो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 8:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
1: Kya aap aasabi dard, jodon ki tak
3: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: इसको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर पूरे मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई।
1: ऐसा बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक के हाकमियत या हक के मलकियत पर किसी को सियासी टाका नहीं डालने दे।
2: आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 13 तकन ते चूंड जा गैर हतमी ए गैर सरकारी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। चूंडन के पहरे मरहले में मीरपुर कोटली ए बम्पर के 13 तकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्ड वोटर्स कायम थियल 2454 पोलिंग स्टेशन्स में पंजी वोट जो हक इस्तेमाल कयो। औरतुन जो वडो अंग भी वोट कास्ट करण लाए पोलिंग स्टेशन्स ते पहुतो। पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के उम्मीदवार विच में चोटी जो मुकाबलो। वॉन्टन के गैर मामूली टर्नआउट सबब पोलिंग जो वक्त एक कलाक बढ़ाया वो हो। पीपल्स पार्टी ए

भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे ऐं अदम इस्तेहकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ भारती वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाननि क़दमनि सबबि खितो यरगमाल बणियल आहे। भारती वज़ीर जी बयानबाज़ी बि गणती जोगी आहे, जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे। अमरीका खे ॻाल्हियूं बहाल करण जी दरख़्वास्त नाहे कई, इएं करणु असांजी फितरत में नाहे। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त सालिस असां ताईं अमरीका जा पैगाम पहुचाईंदा आहिनि। फ़िलहाल वाशिंगटन सां असांजी का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। आबनाए हुरमस बाबति ओमान सां मुस्बत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। आबनाए हुरमस जी सूरत हाल तब्दील नाहे थी। अमरीका खे जंग ऐं अमन जो वक़्तु तय करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। यूक्रेन खे ईरानी जहाज़ ते हमले जो जवाबु ज़रूरु ॾियणो पवंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़ख़ीरे में खोट वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका ईरान सां संजीदा ॻाल्हियूं करे रहियो आहे, सफ़ारतकारी ते घणो वक़्तु ज़ाया नथो करे सघिजे। ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी खे जल्दी कुलायो वञे, ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त पहिरियां खां वधीक सख़्तु हमला कया वेंदा। ईरान आबनाए हुरमज़ मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ 6 बहरी ॿेड़नि खे रोके छॾियो। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि आबनाए हुरमज़ जी गैर महफ़ूज़ रस्ते तां सफ़र जी कोशिश कंदड़ 6 बहरी ॿेड़नि मां हिकु हादसे जो शिकार थियो आहे। बहरी ॿेड़ा अमरीकी फ़ौज जी हिदायतुनि ते आबनाए हुरमज़ मां सफ़र करे रहिया हुआ त खेनि रोकियो वियो। ईरान यूक्रेन ख़िलाफ़ रूस खे हथियार फराहम करे जंग में शामिल थी चुको आहे। असांखे मुहतात रहणो पवंदो, कोशिश करणी पवंदी त नओं महाज़ न खुले। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चयो आहे त ईरान ऐं शुमाली कोरिया पहिरीं ई असां ते हमला करे चुका आहिनि, उमेद आहे त हमला न वधाईंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरान पंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाइनि ते जवाबु ज़रूरु ॾींदो आहे ऐं यूक्रेन खे बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी।

सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाक़ात, कराची जी पाणी वारनि मनसूबनि जो जाइज़ो वरितो वियो। कराची में पाणी वारनि मनसूबनि जी बहितरी लाइ तेज़ रफ़्तार रोड मैप ते बेतफ़ाक़ WSSIP जे मनसूबनि ते कम जी रफ़्तार तेज़ करण जी बि हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान गिरफ़्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितरे बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। रुगो 25,000 ते बलोच नौजवाननि खे क़तल करण जो एतिराफ़। दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तंज़ीम पैसनि जी लालच ॾेई भर्ती कयो, दहशतगर्दीअ जी तरबियत बि ॾिनी वई। हमलनि बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फरार थियण जा गुर बि सेखारिया विया। रुगो 25,000 एवज़ पंहिंजनि बलोच भाइरनि जी रत सां पंहिंजा हथ रंगिया। दहशतगर्द तंज़ीम छॾींदड़ खे मारियो वेंदो आहे।

सिंध में एक ही डीं में नव बारड़ा बुडी वया सत जा लाश एक के बचाए वो जडे तो एक जी गोला जारी पीर गोठ वेझो गोठ गाबर मेतलो में टे भेनर ए संदन मासूम भाव लालन वाह में बुढ़ी फौत थी वया बुढ़ी फौत थेलन में नींगर सराज निंगरी कूंज पारस ए दोदी शामिल लाड़काने भरसा भी गोठ अब्दुल समन तुनियो में टे बारड़ियों दुआ जहरा ए तंजीना बुढ़ी हयाती वजाए वेठियों उडेर लाल वेझो नसीर वाह में बे ब नींगर बुढ़ी वया इलाके वासन एक नींगर अवेस के बचाए वरतो जडे तो बुढ़ी वयल हसीब की गोला जारी सिंध जो सरकारी अस्पतालों एच आई वी पखेड़ जो मर्कज बणजी वयूं सब का वधीक मासूम बाला मुतासिर गेम्स वलेका ए लॉन्डी जे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची जे सब का वडे बारन जी अस्पताल एन आई सी एच में आयल बार भी एच आई वी में मुब्तला होण जी तस्दीक ज़रियन मूजिब कराची समेत सूबे के बेन इलाकन में इलाज लाए एन आई सी एच आंदल बारन जा टेस्ट कराने दौरान केतरन ही बारन में एच आई वी की तस्दीक थी है मुतासर बारन जो मजमू अंग वधी पंजा थी वयो हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ मुतासर उम्मीदवार ए शागिर्दन जो चौथे डी भी एहतजाज जारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस आडो कायम एहतजाजी कैंप से सियासी समाजी अगवान अदीबन की शिरकत कराची बार के अहदेदार भी कैंप से पहुंता अगवान उम्मीदवार जायज मुतालबा तस्लीम न थे तो भरपूर तहरीक हलई वेंदी

सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में पानी खोट खिलाफ़ सियासी समाजी धुरन जहा एहतजाजी मुजाहरा धरना। खैरपुर नाथन शाह में ज़रई पानी खोट खिलाफ़ यूथ पार्लियामेंट आबादगार इतिहाद के सर से एहतजाज किया वो। नाला डिस्ट्रिक्ट कालरा शाह खुदावा बेन वाहन में भी पानी की खोट खत्म करने का मुतालबो। बान सैदाबाद में बंभा सुल्तानपुर शाख में पानी खोट खिलाफ़ एहतजाजी मुजाहरो किया वो। मेहण बरपासे के शाखन में भी पानी खोट खिलाफ़ आबादगारों को मार्च धरणों शाखन के पूछड़ ती पानी पहुंचने का मुतालबो। कुंभ भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में गाड़ियों जो मिस्त्री कतल। बबर वडा लिंक रोड से हथियारबंदन फायरिंग करे मिस्त्री फैज सूमरो के कतल कर छोड़ो। नौजवान वालिद से गड कुंभ का गोठ तरफ वही रो हो तो खेस कतल किया वो है। वारसन मूजिब जवाबदार सरफराज भट्टी बाबू रिंद नूर मोहम्मद रिंद बेन नौजवान के कतल किया है। इंसाफ किया वे

हैदराबाद जी कंज्यूमर कोर्ट पुलिस खाते जी बरतरफ थियल जूनियर क्लार्क मारिया सारियो ए ट्रांसजेंडर खिलाफ भंज ड्राह हंगामे केस में दहशतगर्दी जा कलम शामिल करण वाली दरख्वास्त मंजूर करे वरती। पुलिस पारां दहशतगर्दी जा कलम शामिल करण वाली डिनल दरख्वास्त ते महफूज थियल फैसलो जारी। मारिया सारियो ए ट्रांसजेंडर्स अदालत में पेश थिया। अदालत केस जा दस्तावेज ए बियो रिकॉर्ड दहशतगर्दी टोड़ अदालत मुंतकिल करण जो हुक्म दींदे चयो आहे त अहिड़ा ॾोह दहशतगर्दी जे खात्मे वारी अदालत जे अख़्तियारनि जे दायरे में अचनि था, तंहिं करे मौजूदा अदालत खे हिन केस जी वधीक ॿुधणीअ जो अख़्तियार हासिल नाहे। वण सिंध अमर जी नाव केटीएन न्यूज ए कावश के सर के भरपूर मोट। सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असर का बचाने लाए सिंध वासन पारा वण लगाने जो सिलसिलो जारी। केटीएन न्यूज ए कावश पारा 31 जुलाई तई वण पोखण जो सर डिनल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: सिंध के माथे का झूमर
6: GFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: इसको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर और मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई।
1: इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक के हक में या हक के मलकियत पर किसी को सियासी ताका नहीं डालने दे।
2: आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 13 टकन से चूंड जा गैर हतमी ए गैर सरकारी नतीजा अचान सिलसिलो जारी। चूंड के पेरे मरहले में मीरपुर कोटली ए बंबर के 13 टकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्ड वोटर्स कायम थे। 2454 पोलिंग स्टेशन में 5 वोट जो हक इस्तेमाल किया। औरतुन जो वो अंग भी वोट कास्ट करने लाइ पोलिंग स्टेशन से पहुंतो। पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के उम्मीदवार विच में चोटी के मुकाबले का इम्कान। वोटन के गैर मामूली टर्नआउट सबब पोलिंग जो वक्त 1 कलाक बधाई वो हो।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं अमरीकी कांग्रेस जे वफ़द पारां दिफ़ाई ऐं वापारी सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। रायन केत ज़िनकी ऐं माइकल जेम्स पारां GHQ रावलपिंडीअ में फील्ड मार्शल सां मुलाक़ात। हिते जी मौजूदा सूरत हाल, दिफ़ाई सहकार वधाइण, बेतरफ़न वापारी ऐं इक़्तिसादी राब्तनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। आसिम मुनीर चयो त पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक़ी जा तमामु घणा मौक़ा मौजूदु आहिनि। पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम मुआशी तरक़ी वापार खे हथी ॾियण ऐं राब्तनि सां वाघियल आहे। ISPR मूजिबि मुलाक़ात दौरान फील्ड मार्शल ऐं अमरीकी फ़द विच में मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान ऐं अमरीका जा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण जो बि अज़म वरचायो वियो।

ईंदड़ ॿिनि महीननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छॾियो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद चयो आहे त जुलाई खां फेबरवरी ताईं महांगाई 5.5% हुई। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारो 13.9 करोड़ डॉलर रहियो। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारो GDP जे हिसाब सां 0.1% रहंदो। सभिनी अदायगियुनि बावजूदि नाणे जी मटा सटा जा ज़ख़ीरा वधिया आहिनि।

भारत खिते में दहशतगर्दी जो सब का वो सरपरस्त है अदम इस्तेकाम जो जिम्मेवार है। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ भारती वजीर राजनाथ सिंह के बयान के रद्द कंदे है तो भारत के जारहाणन कदम सबब खितो यरगमाल बनल है। भारतीय वजीर के बयानबाजी बेगणती जोगी है जो खतरन के वधिक वधाए रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियार के जखीरे में खोट वाली खबरों के रद्द कर छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीका ईरान से संजीदा गाल है सफारतकारी से घो वक्त जया न तो कर सकते गाल सफारतकारी के जल्दी उकलो वे गाल नाकाम थी तो पर्या का सख्त हमला क्या वा। अमरीका के गाल बहाल करने की दरख्वास्त ना कई इन करण से असि फितरत में ना है। ईरानी परदे वजार के तर्जमान इस्माइल बकाई है ट्राकड़ी कदड़ मुल्क असा ती अमरीका जहा पैगाम पहुंचाईंदा फिलहाल वॉशिंगटन से असि का भी गाल बोल नी है। आबनाह हुरमज बाबत ओमान से मुस्बत गाल आबनाह हुरमज की सूरत हाल तब्दील ना थी अमरीका के जंग अमन जो वक्त तय करने की इजाजत न दिनी वी।

हिकु ई ॾींहं में नव ॿार ॿुॾी विया, सत जा लाश ते हिक खे बचायो वियो, हिक जी ॻोल्हा जारी। पीर ॻोठ वेझो ॻोठ गाबर मेत्रो में टे भेनरूं ऐं संदसि मासूम भाउ लालण वाह में ॿुॾी फौत थी विया। फौत थियलनि में नींगर सिराज, नींगरी कूंज, पारस ऐं दोती शामिल। लाड़काणे भरिसां बि ॻोठु अब्दुल समन तुनियो में टे ॿारियूं दुआ, ज़हरा ऐं तंजीना ॿुॾी हयातियूं विञाए वेठियूं। ओडेरो लाल वेझो नसीरवाह में बि ॿ नींगर ॿुॾी विया। इलाइक़े वासियुनि हिकु नींगर अवेस खे बचाए वरितो। ॿुॾी वियल हसीब जी ॻोल्हा जारी। सिंध जूं सरकारी इस्पतालूं एच आई वी पखेड़ जो गढ़ बणिजी वियूं। सभ खां वधीक मासूम ॿारा मुतासिर। गेम्स वलीका ऐं लॉन्डी जी सोशल सिक्योरिटी इस्पताल बाद कराची जे सभ खां वॾे ॿारनि जी इस्पताल एन आई सी एच में बि मुबतला हुअण जी तस्दीक। ज़रियनि मूजिबि कराची समेत सूबे जे ॿियनि इलाइक़नि मां इलाज लाइ एन आई सी एच आंदड़ ॿारनि जा टेस्ट कराइण दौरान केतिरनि ई ॿारनि में एच आई वी जी तस्दीक थी आहे। मुतासिर ॿारनि जो मजमूई अंगु वधी 50 थी वियो।

हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ मुतासर उम्मीदवार ने शागिर्दन जो चौथे ॾींहं बि एहतजाज। SPSC हेड ऑफिस आॾो क़ाइम एहतजाजी कैंप ते सियासी समाजी अॻवाननि ऐं अदीबनि जी शिरकत। कराची बार जे उहिदेदारनि बि कैंप ते पहुता। अॻवाननि चयो त उमेदवारनि जा जाइज़ मुतालबा तस्लीम न थिया त भरपूर तहरीक हलाई वेंदी। कुंभ भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में गाॾियुनि जो मिस्त्री क़तल। बबर वॾा लिंक रोड ते हथियारबंदनि फायरिंग करे मिस्त्री फैज़ मोहम्मद सुमरो खे क़तल कयो। नौजवान वालिद सां गॾु कुंभ खां ॻोठ तरफ़ वञी रहियो हो त खेसि क़तल कयो वियो आहे। अर्सन मूजिबि जवाबदारनि सरफराज भट्टी, बाबू रिंद, नूर मोहम्मद रिंद ऐं ॿियनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। हैदराबाद जी कंज्यूमर कोर्ट पुलिस खाते जी बरतरफ थियल जूनियर क्लार्क मारिया सारे केस में दहशतगर्दी जा कलम शामिल करण वारी दरख़्वास्त मंज़ूर करे वरिती। पुलिस पारां दहशतगर्दीअ जा कलम शामिल करण वारी ॾिनल दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो जारी। मारिया सारियो ऐं ट्रांसजेंडर्स अदालत में पेश थिया। अदालत केस जा दस्तावेज़ ऐं ॿियो रिकॉर्ड दहशतगर्दी टोड़ अदालत मुंतकिल करण जो हुकुम ॾींदे चयो त अहिड़ा ॾोह दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारी अदालत जे अख़्तियारनि जे दायरे में अचनि था, तंहिं करे मौजूदा अदालत खे हिन केस जी वधीक ॿुधणी जो अख़्तियार हासिलु न आहे। ऐं हिकु वण सिंध अमर जी नाव KTN न्यूज़ ऐं कावज़ जे सॾे खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ सिंध वासियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी। KTN न्यूज़ ऐं कावज़ पारां 31 जुलाई ते वण पोखण जो सॾु ॾिनलु।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.8।